बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम

0: कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप जो कहता है थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत हुई गीत के साथ, पलक मुच्छल और अमित त्रिवेदी की आवाजों के साथ। 10:08:30, मैं पूजा आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। चलता रहेगा कार्यक्रम पूरे 11 बजे तक और ढेर सारी जानकारियों के साथ ढेर सारे गीत होंगे आप सभी सुनने वालों के लिए। तो चलिए शुरुआत में आपको बता दूं मौसम का हाल। स्थानीय मौसम विभाग ने कहा है कि आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बात करें अगर गुजरे कल की, तो अधिकतम तापमान 35.2 यानी कि सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक रहा और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री यानी कि सामान्य से 4.2 डिग्री कम रहा। उच्च आर्द्रता 98% और निम्न आर्द्रता 70% रही। बारिश 24.6 मिलीमीटर नापी गई। मौसम के हाल के बाद कार्यक्रम में तापसी पन्नू और दिलजीत दोसांझ की आवाज आप सभी श्रोताओं के लिए।
1: कहता हूँ कभी मैं हूर हूँ

इश्क को किसी बंधन में बांध पाना मुश्किल है। इश्क कुछ भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, खेलों से भी हो सकता है, और फुटबॉल के खेल से भी हो सकता है। हो सकता क्या, हम बंगाल वासियों को तो फुटबॉल से विशेष लगाव होता है, विशेष रूप से प्यार होता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत आज रात यानी कि भारतीय समय के अनुसार 12 जून से होगी और इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका करेंगे। फाइनल 19 जुलाई यानी कि भारतीय समय अनुसार 20 जुलाई को न्यू जर्सी में खेला जाएगा। यह मेंस फुटबॉल के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का 23वां संस्करण होगा। और इसी के साथ जुड़े हैं एक और जानकारी। वर्ष 2010 में अफ्रीका ने 19वें फुटबॉल वर्ल्ड विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी की। यह पहला मौका था जब अफ्रीकी महाद्वीप में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था।

हर वो व्यक्ति जिसे है बारिश से प्यार, उसके लिए है खुशखबरी। मानसून ने केरल में दस्तक देने के 6 दिन में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को कवर कर लिया है। मंगलवार को यह मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल पहुंचा और अब तक 16 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। अगले 4 से 5 दिन में मानसून महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बाकी हिस्सों, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ सकता है। यानी कि अब बारिश का मौसम दस्तक दे चुका है, तो बारिश के मौसम में बनने वाले खान पान से हम जल्द ही जुड़ने वाले हैं। यानी कि बहुत जल्द ही वो समय आने वाला है जब हम लेंगे चाय पकौड़ों का आनंद।

0: 107 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का एफएम रेनबो चैनल, मैं हूं आपके साथ पूजा, लेकर कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। और अब रुक करते हैं कार्यक्रम के अपने अगले सेगमेंट की ओर,
1: एक चुटकी नुस्खे।
0: जी हाँ दोस्तों, जिक्र छुड़ा था चाय का, और अगर चाय हम अपने किसी साथ बेहतरीन पसंदीदा व्यक्ति के साथ पिए तो वो चाय हमारे दिल दिमाग पर एक गहरा निशान छोड़ जाता है, लेकिन अगर उसी चाय के कुछ बूंदें हमारे कपड़ों पर गिर जाएं तो हम उस निशान को छुड़ाने की फिराक में लग जाते हैं। तो अगर आपके भी कपड़ों पर चाय के दाग लग गए हैं तो उन्हें छुड़ाने के कुछ आसान घरेलू नुस्खे दे देती हूँ आपको चुटकी भर। 2 चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं और इसे दाग पर लगाकर रात भर या 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें, और अगली सुबह हल्के हाथों से इसे रगड़कर नॉर्मल डिटर्जेंट के साथ धो लें। साथ ही साथ एक और नुस्खा, व्हाइट वेनेगर, जी हाँ सिरका। चाय में मौजूद टैनिन को तोड़ने के लिए सिरका बेहतरीन उपाय हो सकता है। 1 कटोरी में 1 कप पानी, 1 चम्मच सफेद सिरका और थोड़ा सा डिश सोप यानी कि बर्तन धुलने का साबुन मिलाएं और दाग वाले हिस्से पर इस घोल को 15 मिनट से लेकर 30 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें और फिर कपड़े को ठंडे पानी से धो लें। आप चाहें तो चाय की दाग वाली जगह पर नींबू का रस भी प्रयोग कर सकते हैं, इसे भी 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें ताकि ये दाग को सोख ले, और फिर सादे पानी और डिटर्जेंट से धो लें।

याद रहे, अगर चाय का दाग लगा है तो गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। गर्म पानी डालने से दाग हमेशा के लिए कपड़े के रेशों में सेट हो सकता है, पक्का हो सकता है, और दाग को रगड़े नहीं, हल्के हाथों से थपथपाकर टैप करके छुड़ाने की कोशिश करें। रगड़ने से दाग बाकी हिस्सों में भी फैल सकता है।

0: सकता है, नुस्खे हैं, आजमाए नुस्खे हैं, आप भी आजमा कर देखें।
1: एक चुटकी नुस्खे।
0: और अगर ये नुस्खे काम न आए तो कह दीजिए दाग से, तू बढ़िया मैं भी बढ़िया।
2: प्राण प्रिय,

0: जी हाँ दोस्तों, आप भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया, हम सब बढ़िया। लेकिन वो कौन सी घटनाएं हैं, वो कौन सी बातें हैं जो बनाती हैं आज के दिन को थोड़ी सी और बढ़िया, आज के दिन को इतिहास के पन्नों पर यादगार, आइए जान लेते हैं
1: आज के दिन।
0: जी हाँ दोस्तों, आज ही का वो दिन था जब वर्ष 1921 में ब्राजील में महिलाओं को चुनाव में मतदान का अधिकार मिला था।

वर्ष 1987 में ब्रिटेन की आयरन लेडी कही जाने वाली मार्गरेट थैचर ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला और देश के 160 बरस के इतिहास में यह उनकी उपलब्धि हासिल करने वाली पहली राजनेता बनी। वर्ष 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के मुताबिक उनकी अस्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में बिखेरा गया था। आज के दिन जन्मे व्यक्तियों की बात करें तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का, जिनका जन्म हुआ था वर्ष 1897 में। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी का जन्म हुआ था वर्ष 1989 में। भारत के भूतपूर्व 17वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी का जन्म हुआ था आज ही के दिन वर्ष 1947 में। भारतीय उत्प्रेरक वैज्ञानिक पॉल रत्नस्वामी का जन्म हुआ था आज ही के दिन वर्ष 1942 में। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक, कोरियोग्राफर और शिक्षाविद कनक रेले का जन्म हुआ 1937 में। भारतीय विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के एस हेगड़े का जन्म हुआ था आज के दिन वर्ष 1909 में। और मिजो राष्ट्रवादी मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल डेंगा का जन्म हुआ था वर्ष 1927 में। वर्ष 1948 में भारतीय राजनीतिज्ञ एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ था। रुक करें अगर आज के दिन मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों का, तो सबसे पहला दिवस आता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित। इस विशेष दिन के बारे में सबसे खास बात यह है कि यह दिन बच्चे के खेलने, आराम करने और मनोरंजन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 25 मार्च 2024 को लिए गए संकल्प के बाद 11 जून 2024 को यह दिवस आधिकारिक रूप से पहली बार मनाया गया। बच्चों के मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक विकास के लिए खेल के महत्व पर जोर देता है यह दिन और लोगों को स्क्रीन फ्री टाइम, स्क्रीन से दूर समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है।

ये तो बात हुई खेल दिवस की, साथ ही साथ आज के दिन को मनाया जाता है नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे, राष्ट्रीय जीवन सौंदर्य दिवस। यहाँ सौंदर्य बाह्य सौंदर्य की बात नहीं कर रहा, ये है मानव के भीतरी सौंदर्य की बात, हमारा जो आंतरिक गुण है दया, कला, सुंदरता के प्रति आकर्षण, प्रकृति, जीव जंतु, मानव मात्र से प्रेम, इन सभी सुंदरताओं की बात करता है आज का दिन। यह दिन लोगों को अपने और दूसरे के जीवन को प्रेम, दया, करुणा से भर देने की बात करता है, खुशनुमा बनाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही साथ हर साल 11 जून को राष्ट्रीय भुट्टा दिवस मनाया जाता है। यह गर्मियों में पिकनिक के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जहां लोग ताजे मक्के के भुट्टों को उबाल कर, ग्रिल करके या भून कर मक्खन और मसालों के साथ इसका लुत्फ उठाते हैं। हालांकि यह दिन एक अनौपचारिक दिन है, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा विशेष रूप से होती है और हो रही है। इतनी सारी जानकारियां

0: और हमारा कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप।
1: आज के दिन
0: नॉनस्टॉप गपशप जो कहता है थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, तो चलिए एक के बाद एक दो गीत सुनेंगे नॉनस्टॉप गपशप में, और साथ ही साथ आपके फोन कॉल्स का रहेगा हमें इंतजार। 2243-4312 है हमारा नंबर, जुड़ जाइए दिल से दिल तक और बता दीजिए किस तरह आप किसी की जिंदगी को खुशनुमा बनाने की कोशिश करते हैं, कर रहे हैं, या आज के इस खास दिन के मौके पर करेंगे।

0: वादा किया था मैंने कि आपको सुनवाऊंगी एक के बाद एक दो गीत, लेकिन दोनों गीतों के बीच में पायल की अगर थोड़ी सी झनकार आ जाए हमारे बीच तो शायद कार्यक्रम और सुंदर सज जाए। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी पायल, बताएं आप इस समय ऑन एयर हैं, तो बताइए आज का जो हमारा विषय है, किस तरह से आप लोगों की जिंदगियों को खूबसूरत बनाने की कोशिश करती हैं?
1: दीदी আমার एक्चुअली মনে হয় মানুষের জীবনকে সুন্দর করে তোলার সবথেকে মূল উপাদান হচ্ছে ভালোবাসা। সেটা হচ্ছে মানুষ কিন্তু অনেক কিছু চায় না, যে আমাদের টাকা পয়সা দিয়ে অনেক কিছু করতে হবে এমনটা নয়। আমরা যদি ভালোবাসা দিয়ে কেয়ার করে যত্ন করে কোনো মানুষকে আগলে রাখতে পারি, তো তার থেকে বড় সুন্দর লাইফ সাজানো বা তাকে সুন্দর করে তোলার বড় জিনিস মনে হয় আমার কিছু হয় না। তো এটাই বলতে চাই।
0: তো আপনার কহনা হ্যাঁ কি প্রেম सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा एक और प्रश्न आता है पायल, कि जब हम प्रेम की बात करते हैं, हम किसी को प्रेम करते हैं लेकिन अपने तरीके से करते हैं, वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसे उसके तरीके से प्यार किया जाए, तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? जैसे कई बार प्यार चाहता है कि मुझे आजाद छोड़ दो और हम चाहते हैं कि हम उसे प्रोटेक्ट करें, तो ऐसे में क्या किया जाए?
1: दीदी एक टू बांग्लाए प्लीज।
0: एक टू बांग्लाए, लेकिन आपको हिंदी प्रोग्राम्स में आने के लिए थोड़ी सी हिंदी सीखनी होगी। चलिए कोई बात नहीं, ये बात मेरे अगले कॉलर के लिए छोड़कर बढ़ते हैं हम अगले गीत की ओर।

0: जी हाँ दोस्तों, हमारे अगले कॉलर फ्रेंड्स जुड़ चुके हैं हमसे। कौन है हमारे साथ?
1: हेलो, गुड मॉर्निंग जी।
0: वेरी गुड मॉर्निंग। कौन और कहाँ से?
1: मैं जीतू बात कर रहा हूँ, उड़ीसा से।
0: स्वागत है आपका जीतू कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। तो बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप, किस तरह आप बनाते हैं अपने अपनों की जिंदगी को खूबसूरत?
1: देखिए जी, जैसे कि हम अपना चाहेंगे सभी को, मतलब मेरे दोस्त है चाहे मेरे जो भी फैमिली मेम्बर्स है, सभी को मतलब चाहेंगे कि प्यार बना, मतलब तो जो है मतलब सभी मतलब जिंदगी में जो खुशियाँ प्यार मतलब देना मतलब अच्छा लगता है और हम देना भी चाहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई दोस्त या कोई भी हो तो संग में पड़े, मतलब इतना हो जाता है कि हम चाहेंगे कि मतलब इतना संग में ना हो, मतलब थोड़ा मेरा मतलब काम भी है तो मैं अकेला रहूँगा थोड़ा काम ही कर पाऊंगा, है ना। तो तो अब इसमें क्या है कि जैसे कि आप कोई हमको मतलब चाहे कि मेरे संग ही मतलब घूमे फिरे, है ना, तो इस तरह करने से तो नहीं होगा, समझना होगा इसमें मतलब प्यार मोहब्बत की बातें को समझना पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, तो यही मैं भी कहना चाहती हूँ कि हम जब किसी रिश्ते में होते हैं तो उस रिश्ते के अलावा भी हमारी अपनी पर्सनालिटी होती है। मैं सिर्फ यहाँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नहीं, मैं भी हूँ। तो हम अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, किसी की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसे थोड़ा सा समय, थोड़ा स्पेस भी दें, ये बेहद जरूरी होता है। यानी कि किसी को सिर्फ अपने तरीके से मत प्यार करो, वो कैसे चाहता है कि उसे प्यार किया जाए उस तरह से थोड़ा सा और प्यार करो।

आपकी आंखों में भी अगर पल रहा है सपना विदेश जाने का और पासपोर्ट आपका अब लंबित मामलों में फंसा हुआ है, तो आपके लिए है एक खास खबर। पासपोर्ट आवेदनों के लंबित मामलों को कम करने के लिए कोलकाता के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने शनिवार को पासपोर्ट मेला आयोजित करने की घोषणा की है। यह विशेष अभियान आनंदपुर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र में आयोजित किया जाएगा, जहां लगभग 2000 आवेदनों का निस्तारण होने की संभावना है। 13 जून के स्लॉट के लिए आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा और निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही करना होगा। और इसी खबर के साथ, इसी न्यूज के साथ घड़ी की सुइयां कह रही हैं बस आज के लिए गपशप को यहीं देना होगा विराम। तो आज के लिए कार्यक्रम बस यहीं तक होगी। आपसे मुलाकात फिर किसी सुबह, फिर किसी शाम, नॉनस्टॉप गपशप में या फिर छायालोक में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, जुड़े रहें दिल से दिल तक।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे बेहद खास संगीत के कार्यक्रम यानी कि कार्यक्रम 3 का तड़का में। और आज मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, लेकर इस कार्यक्रम को सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों, भारतीय रसोई में तड़का किसी भी व्यंजन का स्वाद बढ़ा देता है और ठीक उसी तरह हमारा यह कार्यक्रम आपके दिन में, जी हाँ, मनोरंजन का स्वाद घुलने के लिए लेकर आता है। साथ ही खुशियों का संगम, साथ ही शानदार गीत और गीतों में अलग अलग एहसास, ये जो बातें हैं ना और ये जो गीते हैं, ये हमारे मनोरंजन को, हमारे एहसास को और भी बढ़ा देते हैं। क्योंकि कभी ये गीत हमें प्यार की दुनिया में ले जाएंगे, कभी दोस्ती की यादें ताज़ा करेंगे, तो कभी जीवन के खूबसूरत रंगों से रूबरू कराएंगे। हर तिकड़ी यानी कि इस कार्यक्रम का जिस प्रकार से नाम है 3 का तड़का, जी हाँ, वो अपने साथ लाएगी कुछ दिलचस्प किस्से, रोचक जानकारी और ढेर सारी मधुर यादें। तो दोस्तों, चाहे आप अपने काम में व्यस्त हो, सफर कर रहे हो या घर पर आराम फरमा रहे हो, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ मिलने वाला है गीतों का ऐसा तड़का जो आपके मन को तरोताजा कर देगा। तो आइए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और हाँ, तैयार हो जाइए संगीत के इस अनोखे सफर में। तो दोस्तों, अभी आपने ये गीत सुना फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से ऐश किंग और शाशा तिरुपति की आवाज में। तो दोस्तों, चलते हैं अगले गीत की ओर।

0: एनएफएम रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
1: तो दोस्तों, आज मैं सभी को भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी योजना के बारे में बताने जा रही हूं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो दोस्तों, जीवन अनमोल है, लेकिन जीवन अनिश्चित भी। किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है घर का कमाने वाला व्यक्ति। अगर किसी कारणवश उसकी असमय मृत्यु हो जाए तो परिवार पर आर्थिक संकट आ जाता है। ऐसे ही संकट के समय परिवार को सुरक्षा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। यह योजना खास तौर पर आम नागरिकों को कम प्रीमियम में जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं कि इस बीमा योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति को किसी भी कारण से मृत्यु होने पर उसके परिवार या नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाती है। यह बीमा सुरक्षा पूरे 1 वर्ष के लिए होती है और हर साल स्वतः नवीनीकरण किया जा सकता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है इसका कम प्रीमियम। इसमें केवल 330 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम देना होता है, जो सीधे बैंक खाते से स्वतः ही कट जाता है। यानी साल भर की सुरक्षा, वो भी बहुत कम खर्च में। इस योजना का लाभ वे सभी लोग उठा सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो और जिनका बैंक खाता हो। बैंक खाता होना आवश्यक है, क्योंकि बीमा राशि और प्रीमियम दोनों बैंक के माध्यम से ही संचालित होते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को किसी भी सरकारी या निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या जनधन खाते के माध्यम से लिया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया बहुत ही सरल है। बैंक जाकर या बैंक की ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से इस योजना से जोड़ा जा सकता है। तो साथियों, इस योजना का उद्देश्य केवल बीमा देना नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि किसी परिवार को अचानक आई विपत्ति के कारण आर्थिक रूप से टूटना ना पड़े। आज के समय में जब जीवन में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक मजबूत सुरक्षा कवच बनकर सामने आती है। यह योजना गरीब, मध्यम वर्ग और आम जनता के लिए किसी वरदान से कम नहीं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ नहीं लिया है, तो अवश्य इस योजना से जुड़े और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करें।
0: रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
2: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

दोस्तों अभी आप ये गीत सुन रहे थे पलक मुच्छल की आवाज में। स्टूडियो में समय हो चला है 3:22 और 40 सेकंड, यानी कि बातों और गीतों का सिलसिला यूं ही चलने वाला है आपकी और मेरे बीच, यानी कि कार्यक्रम 3 का तड़का में सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो चलिए दोस्तों, गीतों के सिलसिले को इस तरह आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

0: तो दोस्तों स्टडी में समय हो चला है 3:26:20 यानी कि ये जो कार्यक्रम है अपने समापन की ओर बढ़ चला है। जी हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों संगीत मस्ती और मस्ती से भरे आज के इस दिन के तड़के में अब विदा लेने का समय आ गया है। उम्मीद है कि आज की गीतों की बातों ने और आपके दिन को और भी खुशनुमा बनाया होगा। कभी किसी गीत ने आपको बीते दिनों की याद दिलाई तो कभी किसी ने आपके चेहरे पर मुस्कान बिखरी। तो दोस्तों कहते ना संगीत वो साथी है जो हर मौसम हर एहसास और हर सफर में हमारे साथ चलता है और इसी संगीत के साथ हमने आज का ये खूबसूरत सफर तय किया। तो दोस्तों मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति नई बातों और नए गीतों के साथ। तब तक अपने सपनों को उड़ान दीजिए और अपने अपनों के साथ खुशियां बांटिए और जीवन की मधुर धुनों को महसूस करते रहिए। तो दोस्तों अपनी दो ज्योति को दीजिए इजाजत और जाते जाते आप सभी के लिए एक तराना छोड़े जाती हूँ।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
0: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
0: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
0: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती है। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजी जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
0: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
0: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
0: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओ, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओ, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
0: तो श्रोताओ, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
2: जी
0: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
2: जी
0: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
2: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भून कर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
0: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
2: जी
0: तो श्रोताओ, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
2: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
0: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
2: जी
0: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
2: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने

0: पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
1: जी, श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
0: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओं, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियां उनके लिए अनुकूल हैं।
2: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
3: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहाँ बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो राम कृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने

0: एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: राम कृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है
1: जी।
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था, ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं
1: जी।
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है
1: जी। हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे
1: जी। अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए
1: जी।
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसके अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं, बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो, वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5ों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है
1: जी।
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है
1: जी। हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे, यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके
1: जी। बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: नजारा फिल्मों का,

गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त ज्योति लेकर कार्यक्रम चालू के सेगमेंट नजारा फिल्मों का। जी हाँ, और ये सारी बातें हो रही है सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों, फिल्मों की रंगीन दुनिया, दिल को छू लेने वाले गीत और यादगार संवाद और खूबसूरत लोकेशंस की अनोखी सैर लेकर हम एक बार फिर हाजिर है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नजारा फिल्मों का में। दोस्तों, भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, सपनों और संस्कृतियों का एक जीवंत संसार है। कभी बर्फ से ढकी वादियां, तो कभी समुद्र के किनारे, कभी ऐतिहासिक इमारतें और कभी प्रकृति की गोद में बसे मनमोहक दृश्य। फिल्में हमें उन जगहों की सैर कराती है जहां शायद हम कभी जा ना पाए या फिर सिर्फ सोचते ही रह जाए। तो दोस्तों, आज के सफर में हम बातें करेंगे कुछ ऐसे फिल्मों और गीतों की जिन्होंने अपने खूबसूरत दृश्यों, यादगार पलों और शानदार फिल्मांकन से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। साथ ही सुनेंगे वे सदाबहार और लोकप्रिय गीत जो इन दृश्यों को और भी यादगार बना देता है। तो तैयार हो जाइए सिनेमा के रंगों, संगीत की मिठास और खूबसूरत नजारों से भरी इस यात्रा में। मैं हूं आप सभी की होस्ट रंदोज ज्योति और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नजारा फिल्मों का। तो चलिए दोस्तों, एक और मधुर गीत की ओर चलते हैं।

फिल्म दिल से कहिए की, जिसे सुखविंदर सिंह और सपना बस्ती ने गाया है। तो ये दोस्तों, ये जो गीत है अपने संगीत के साथ साथ अपने अद्भुत फिल्मांकन से भी इतिहास रच दिया। ये कि इस गीत में केवल आपको सबसे यादगार दृश्यों में से ये एक है भारतीय सिनेमा के। और इस गीत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे चलती हुई ट्रेन की छत पर फिल्माया गया। दक्षिण भारत की पहाड़ी और हरियाली से भरे इलाकों से गुजरती ट्रेन, दूर दूर तक फैले प्राकृतिक दृश्य, घुमावदार रेल पटरियां और खुले आसमान का अद्भुत संगम इस गीत को एक अलग ही पहचान देता है। गीत को देखते समय ऐसा महसूस होता है जैसे प्रकृति और संगीत एक साथ सफर कर रहे हो। पहाड़, घाटियां, हरियाली और चलती ट्रेन की ऊर्जा दर्शकों को रोमांच और सौंदर्य का अनूठा अनुभव कराती है। यही वजह है कि ये गीत आज भी बॉलीवुड के सबसे शानदार फिल्माए गीतों में भी गिना जाता है। और इसकी धुन जितनी जोशीली है, इसके नज़ारे उतने ही मनमोहक और यादगार है। यानी कि ये गीत दोस्तों संगीत और खूबसूरत दृश्यों के अद्भुत संगम का ये आनंद देता है। तो दोस्तों, स्टूडियो में समय हो चला है 7:19 और 5 सेकंड। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शालों के सेगमेंट नजारा फिल्मों का, सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर अपनी दोस्त ज्योति के साथ। तो चलिए दोस्तों, अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

ये गीत अपनी मधुर धुन, खूबसूरत रोमांस और रंगीन फिल्मांकन के लिए आज भी खूब पसंद किया जाता है और गीत में आकर्षक आउटडोर लोकेशंस बिल्कुल और मनमोहक परिवेश देखने को मिलता है, जिसकी रोमांटिक भावना को और भी प्रभावशाली बना देता है। गोविंदा और करिश्मा कपूर की शानदार केमिस्ट्री इस गीत की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। एक तो फिल्म का खूबसूरत नज़ारा, जी हाँ, जिस पर ये फिल्माया गया है, और साथ ही साथ हल्की फुल्की रोमांटिक अंदाज इस गीत को और भी यादगार बना देते हैं। और दोस्तों, नज़ारा फिल्मों का में इस गीत का जिक्र इसलिए भी खास है क्योंकि ये हमें 90 के दशक के उस दौर में ले जाता है जब गीतों में संगीत, रोमांस और खूबसूरत लोकेशंस का अनूठा मेल देखने को मिलता था।

से गीत शुरू शुरू और इस गीत का आकर्षक केवल इसकी मधुर धुन और दिलचस्प बोल ही नहीं बल्कि इसके खूबसूरत दृश्य भी है। गीत में पहाड़ी इलाकों की हरियाली, घुमावदार सड़कें, खुले मैदान और प्रकृति की मनमोहक छटा देखने को मिलती है। आसपास फैले शांत और सुंदर नजारे गीत के रोमांटिक माहौल को और भी प्रभावशाली बना देते हैं। गीत के दृश्य प्रेम में डूबे दो दिलों की खुशी और उत्साह को दर्शाते हैं। दूर दूर तक फैली हरियाली, स्वच्छ वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य दर्शकों को ऐसा महसूस कराता है मानो वे भी उस खूबसूरत सफर का हिस्सा है। और दोस्तों, इसमें प्रकृति की सुंदरता और प्रेम की मासूम भावनाएं एक साथ दिखाई देती है। यही वजह है कि आज भी यह गीत अपने संगीत के साथ साथ अपने सुंदर दृश्यों के लिए याद किया जाता है। और इस गीत में प्यार है, मस्ती है और साथ ही साथ खूबसूरत नजारे हैं। तो दोस्तों, स्टूडियो में समय हो चला है 7:39 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक के सेगमेंट नजारा फिल्मों का। जी हाँ, अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों, बातों और गीतों का सिलसिला यूं ही चलने वाला है रात के ठीक 9 बजे तक। यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए इस कार्यक्रम में।

दोस्तों आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म क्या दिल ने कहा का टाइटल ट्रैक उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में। तो दोस्तों बता दूं कि इस वक्त स्टूडियो में समय हो चला 7:45 और 1 सेकेंड और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छलक के सेगमेंट नजारा फिल्मों का। जी हाँ, अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो चलिए दोस्तों अगले नजारे यानी कि अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

तो दोस्तों, ये कैसा गीत है जिसने अपने संगीत के साथ साथ अपने शानदार दृश्यों से भी दर्शकों का दिल जीत लिया था। फिल्म कहो ना प्यार का ये लोकप्रिय गीत अपने खूबसूरत समुद्री नजारों के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। इस गीत में नीले अंबर का विस्तृत विस्तार, दूर तक फैला शांत जल, चमकती धूप और समुद्री हवाओं का मनमोहक एहसास देखने को मिलता है। नाव और समुद्र के बीच फिल्माए गए दृश्य, जी हाँ, इस गीत को एक रोमांचक और सुकून भरा माहौल प्रदान करते हैं। गीत के हर दृश्य में प्रकृति की विशालता और खूबसूरती झलकती है। नीले आसमान और समुद्र का मेल ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति स्वयं इस प्रेम कहानी की साक्षी हो। यही कारण है कि यह गीत केवल अपने मधुर संगीत के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आकर्षक लोकेशंस और मनोहारी दृश्यों के लिए भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है। और दोस्तों, ये गीत हमें याद दिलाता है कि कभी कभी प्रेम की सबसे खूबसूरत कहानियां प्रकृति की गोद में और भी यादगार बन जाती है। यानी कि दोस्तों, इस गीत में समुद्र की लहरों और प्यार की मधुर भावनाएं एक साथ मिलकर सुनाई देती हैं।

और इस गीत की सबसे बड़ी खासियत इसके अद्भुत और रंग बिरंगे नज़ारे हैं। और गीत की शूटिंग नीदरलैंड के प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन्स में भी की गई थी, जहां दूर दूर तक फैले रंग बिरंगे फूलों के खेत किसी सपनों की दुनिया का एहसास कराते हैं। लाल, पीले, गुलाबी और बैंगनी रंगों से सजे ये ट्यूलिप के खेत को एक अलग ही जादुई खूबसूरती प्रदान करते हैं इस गीत को। गीत के दृश्य इतने मनमोहक है कि ऐसा लगता है मानो कोई खूबसूरत सपना आंखों के सामने साकार हो गया हो। फूलों का विशाल खेत, खुला आसमान और प्राकृतिक रंगों का अद्भुत संगम। इस गीत को भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार दृश्यात्मक गीतों में शामिल करता है। और दोस्तों, इस कार्यक्रम में इस गीत का विशेष महत्व है, क्योंकि इसने भारतीय दर्शकों को पहली बार यूरोप के उन रंगीन ट्यूलिप गार्डनों की झलक दिखाई थी, जो आज भी दुनिया के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में गिने जाते हैं। यानी कि दोस्तों, ये गीत खूबसूरत नजारों और मधुर संगीत से सजा हुआ है। और दोस्तों, इस वक्त स्टूडियो में समय हो चला है 7:59 और 5 सेकंड, यानी कि घड़ी की सुई बता रही है कि ठीक 8 बजे हमें जाना होगा न्यूज़ ब्रेक पर। बिल्कुल, और ठीक 8:02 से हम लेकर हाजिर हो जाएंगे फिर से ये कार्यक्रम चायलों के सेगमेंट, जी हाँ, नज़ारा फिल्मों का। यानी कि बस थोड़ी ही देर के लिए अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाज़त।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला।

दोस्तों चाहे कि दूसरे सेगमेंट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों फिल्म के गीत केवल सुरों और शब्दों का संगम नहीं होते, बल्कि वे हमें उन खूबसूरत जगहों की सैर भी कराते हैं जिन्हें देखकर मन खुश हो जाता है। कभी बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, कभी हरे भरे मैदान, कभी नीला समंदर और कभी ऐतिहासिक इमारतों की भव्यता। हिंदी सिनेमा ने हमेशा अपने गीतों के माध्यम से दुनिया के सुंदर नज़ारों को दर्शक तक पहुंचाया है, और नज़ारा फिल्मों का ऐसा ही एक विशेष कार्यक्रम है जहां हम गीतों को केवल सुनते ही नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे खूबसूरत दृश्य और लोकेशंस को भी महसूस करते हैं। इस कार्यक्रम में हम उन गीतों की बात करते हैं जिनकी शूटिंग भारत और दुनिया के विभिन्न आकर्षक स्थानों पर हुई है। इन गीतों के माध्यम से हमें कश्मीर की वादियों से लेकर राजस्थान के किलों तक, हिमाचल की पहाड़ियों से लेकर समुद्र के किनारों तक और विदेशों के मनमोहक स्थलों तक की झलक देखने को मिलती है। फिल्म के ये नज़ारे केवल पर्दे की शोभा नहीं बढ़ाते बल्कि कहानी और गीत की भावनाओं को भी गहराई देते हैं। कई बार किसी गीत की लोकप्रियता में उसकी लोकेशंस भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जितनी कि उसके संगीत और बोल निभाते हैं। दोस्तों अगर कुछ पलों तक हम ऐसे ही गीतों और उनके खूबसूरत नज़ारों की बात करते रहेंगे तो आप भी अपनी कल्पनाओं के पंख फैलाइए और हमारे साथ इस सुरीली और दर्शनीय यात्रा का आनंद लीजिए, क्योंकि यहाँ हर गीत के

साथ जुड़ी है एक नई मंजिल, एक नया दृश्य और एक नई कहानी, क्योंकि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नज़ारा फिल्मों का, जहां गीतों के साथ साथ नज़ारों का भी होता है खूबसूरत सफर। और स्टूडियो में समय हो चला है 8:13 और 10 सेकेंड और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नज़ारा फिल्मों का अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। और दोस्तों, बातों और गीतों का यह सिलसिला चलने वाला है रात के ठीक 9 बजे तक।

गीत आप सुन रहे थे फिल्म हम हो गए आपके से, और इस गीत में प्रेम के पहले एहसास की मासूमियत और खुशी को खूबसूरत नजारों के बीच प्रस्तुत किया गया है। गीत के दृश्य खुले प्राकृतिक परिवेश, हरियाली और शांत वातावरण से सजे हुए हैं, जिसके रोमांटिक भाव को और भी आकर्षक बना देते हैं। गीत का फिल्मांकन ऐसे खूबसूरत स्थानों पर किया गया है जहां प्रकृति की ताजगी और प्रेम की भावनाएं एक दूसरे से घुली मिली दिखाई देती है। खुले आसमान, मन भावन दृश्य और सुरमय परिवेश गीत को एक सुकून भरा एहसास देते हैं। यही वजह है कि यह गीत सुनने के साथ साथ देखने में भी बेहद सुंदर लगता है, और ये गीत कहीं ना कहीं हमें यह याद दिलाता है जब दिल में पहली बार प्यार की दस्तक होती है तो आसपास की दुनिया भी और अधिक खूबसूरत लगने लगती है। शायद यही भावना इस गीत के हर दृश्य में झलकती है, क्योंकि प्यार की पहली धड़कन और खूबसूरत नजारों से सजा हुआ ये गीत बेहद ही खूबसूरत है। तो दोस्तों, स्टूडियो में समय हो चला है 8:25:35, और आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम चालू के सेगमेंट नजारा फिल्मों का, अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। और दोस्तों, बातों और गीतों का यह सिलसिला चलने वाला है ठीक रात के 9 बजे तक, तो यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए हमारे साथ।

दोस्तों ये जो गीत है फिल्म जीत का बेहद ही लोकप्रिय और रोमांटिक गीतों में शुमार है। यह गीत अपने मधुर संगीत और भावपूर्ण बोलों के साथ साथ खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के लिए भी याद किया जाता है। गीत में पहाड़ों की मनमोहक पृष्ठभूमि, हरी भरी वादियाँ, खुले मैदान और प्रकृति की शांत सुंदरता देखने को मिलती है। यह दृश्य गीत के प्रेम और समर्पण के भाव को और भी गहराई प्रदान करता है। गीत के फिल्मांकन में प्रकृति का सौंदर्य और प्रेम की भावनाएं एक साथ दिखाई देती है। दूर तक फैले प्राकृतिक दृश्य, स्वच्छ वातावरण और खूबसूरत लोकेशंस दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यही कारण है कि यह गीत केवल सुनने में ही नहीं बल्कि देखने में ही उतना ही आकर्षक लगता है। नजारा फिल्मों का, जी हाँ, इसमें यह गीत खास इसलिए है क्योंकि इसके दृश्य हमें यह एहसास कराते हैं कि सच्चे प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। प्रकृति की विशालता के बीच व्यक्त की गई यह भावना आज भी दर्शकों के दिलों को छू जाती है। खूबसूरत नजारों और प्रेम की मधुर अनुभूतियों से सजे तो दोस्तों इस सदाबहार गीत का भी हमने आनंद लिया। तो चलिए दोस्तों बातों और गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

दोस्तों, इसी के साथ नज़ारा फिल्मों का आज का ये खूबसूरत सफ़र अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। आज हमने गीतों के साथ साथ उन मनमोहक नज़ारों को भी सैर की जिन्होंने इन गीतों को और भी यादगार बना दिया। कभी रंग बिरंगे फूलों के खेतों ने हमारा मन मोह लिया, तो कभी बर्फ से ढकी वादियों ने हमें अपनी ओर आकर्षित किया, तो कभी नीले समंदर और हरे भरे पहाड़ों ने हमारी कल्पनाओं को नई उड़ान दी। फिल्में केवल कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि हमें दुनिया के अनेक खूबसूरत रंगों से भी रूबरू कराती है। और जब इन नज़ारों के साथ मधुर संगीत जुड़ जाता है, तो हर गीत एक यादगार अनुभव बन जाता है। यही अनुभव आज हमने आपके साथ साझा करने की कोशिश की। उम्मीद है कि गीतों और खूबसूरत लोकेशंस की यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। शायद इन गीतों को सुनते सुनते आपके मन में भी किसी पुराने सफर की याद ताज़ा हुई होगी, किसी पसंदीदा जगह का ख्याल आया होगा, या फिर किसी खूबसूरत सपने ने दस्तक दी होगी। तो दोस्तों, जिंदगी भी एक फिल्म की तरह है, जहां हर दिन एक नया दृश्य है, हर पल एक नई कहानी है और हर याद एक नया गीत। इसलिए जीवन के हर खूबसूरत नज़ारे का आनंद लीजिए, मुस्कुराइए और अपने आसपास की सुंदरता को महसूस कीजिए। तो दोस्तों, जिंदगी भी जैसे कि मैंने कहा एक फिल्म की तरह है। तो दोस्तों, मुझे भी दीजिए इजाज़त, क्योंकि मैं आपकी दोस्त आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी नज़ारा फिल्मों के शायद जल्दी ही किसी अगले अंक में, और कुछ नए गीतों, नई जानकारियों और खूबसूरत नज़ारों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हाँ, संगीत से अपना रिश्ता हमेशा बनाए रखिए। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। और जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ। मैं तो जा रही हूँ दोस्तों, पर आप कहीं मत जाइए, यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।